0: सूचना यस तरह सेवा हस्पिटल दुलेगौड़ा बीपी चोकमा यही साउन 30 गते शनिबार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराका पेट मुटु छाती सुगर तथा थाइराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्णराज अधिकारी हार जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर मेघराज लामिछाने पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराका एनोमेली स्क्यान थाइराइड सहित भिडियो एक्सरे डाक्टर सन्तोष बराल मानसिक तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुभाष विजय महत बिरामीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आउनुहुने भएकाले सम्बन्धित विशेषज्ञ सँग सेवा परामर्श लिन सम्पूर्णमा अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीका लागि सम्पर्क तनहु सेवा हस्पिटल शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 4 बीपी चोक तनहु फोन 0654143777 मोबाइल 98564443।
1: ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्र शुक्ला हिरेटार शिवालयको विकास र दुग्धेश्वर महादेवको मन्दिर निर्माणका लागि सहयोग गर्ने महानुभावहरू
2: रामबहादुर परियार घारे शीतल बस्ती रु 15,055
1: शुक्ला गण्डकी पत्रकार मञ्च शुक्ला गण्डकी रु 10,100
2: हुमनाथ अधिकारी ढोरफिर्दी गणेश टोल रु 10,155
1: जमुना पौडेल पराजुली ढोरफिर्दी हाल अमेरिका रु 10,050
2: शिव अधिकारी ढोरफिर्दी ठुलढुङ्गा टोल रु 25,000
1: ऋषिराम पौडेल सेराबेसी रु 10,000
2: र समय गुरुङ दुलेगौड़ा रु 55,555
1: दलबहादुर छेत्री मिनाम खानी रु 11,115
2: सूर्य प्रसाद भट्टराई ढोरफिर्दी हिमाली टोल रु 30,111
1: कृष्ण बहादुर बसेल ढोरफिर्दी गणेश टोल रु 21,000
2: बाराही बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ढोरफिर्दी उत्तम टोल रु 15,005
1: कलावती वाग्ले ढोरफिर्दी हिमाली टोल रु 10,125
2: दिलबहादुर श्रेष्ठ दुलेगौड़ा रु 1,01,111
1: सूर्य प्रसाद भट्टराई ढोरफिर्दी सेन्टर चोक रु 51,111
2: ऋषिराम महत ढोरफिर्दी हिमाली टोल रु 15,055
1: कृष्णराज घिमिरे दुलेगौड़ा रु 55,555
3: शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6 A complete console. Hello, Shukla Gandaki. Hello, hello.
4: Come on, everybody. Hello, Shukla Gandaki.
3: हाम्रो यही बसु बानी फोनमा गर्ने कुराकानी. फोन गर्नुहोस्, कुरा गर्नुहोस्. Only on 97.6, a complete console.
5: प्रोग्राम हेलो शुक्ला गण्डकी ओन्ली अन शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6 मेगाहर्ट्ज।

0: 4 दुलेगौंडा सिद्धार्थ बैंक भएको भवनमा। प्रोप्राइटर राजेन्द्र पौडेल, शान्ति पौडेल। सम्पर्क 0635414050, मोबाइल 98463311।
1: शुक्ला गण्डकी FM 97.6।

0: नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया।
1: बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया।

बहुत सालों के बाद आती है ऐसी कुछ कहानी जिसमें लिखा जाता है हर इंसान की जवानी। आज भी है अनटोल्ड स्टोरी सॉलमेट आयुजे की कहानी।

0: 97.6 शुक्ला गंडकी एफएम 97.6
1: या बुढा 20 वर्ष देखिको यस्तो पुरानो टिभी कति हेर्ने भनेको के वाइफाई र मोबाइल बाटै कनेक्सन गरेर टिभी चलाउन सक्ने जमाना आइसक्यो।
2: कुरो त ठिकै हो बुढी, छोरोले पनि नयाँ टिभी भनेर हैरान पारेछ। अहिले किन पैसा छैन?
1: लौ, पैसाको टेन्सन मान्नै पर्दैन नि। मनिषा इलेक्ट्रोनिक पसल खैरेनी टारमा किस्ताबन्दीमा इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पाइन्छन्। किस्ताबन्दीमै पाउने भएपछि बाँकी पैसा महिनै महिनामा तिरौला।
3: हामी कहाँ विभिन्न ब्रान्डका टेलिभिजन, फ्रिज, वासिङ मेसिन, मोबाइल लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाउनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। सम्पर्क मनिषा इलेक्ट्रोनिक्स पसल शुक्ला गण्डकी छ खैरेनी टार, रूपान्तर कृषि सहकारी नजिकै आफ्नै भवनमा। प्रोप्राइटर कुलकुमार कुमाल। मोबाइल 9846026617 र 9161638981।
4: सूचना यस तरह सेवा हस्पिटल दुलेगौड़ा बीपी चोकमा यही साउन 30 गते शनिबार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराका पेट मुटु छाती सुगर तथा थाइराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्णराज अधिकारी, हाड जोड्ने तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर मेघराज लामिछाने, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराका एनोमेली स्क्यान थाइराइड सहित भिडियो एक्सरे डाक्टर सन्तोष बराल, मानसिक तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुभाष विजय महत, बिरामीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आउनुहुने भएकाले सम्बन्धित विशेषज्ञ सँग सेवा परामर्श लिन सम्पूर्णमा अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीका लागि सम्पर्क तनहु सेवा हस्पिटल शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 4 बीपी चोक तनहु, फोन 0658414377, मोबाइल 9856044343।
5: ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्र शुक्ला हिलेटार शिवालयको विकास र दुग्धेश्वर महादेवको मन्दिर निर्माणका लागि सहयोग गर्ने महानुभावहरू
6: रामबहादुर परियार, घारी शीतल बस्ती, रु 15,055।
5: शुक्ला गण्डकी पत्रकार मञ्च शुक्ला गण्डकी, रु 10,100।
6: हुमनाथ अधिकारी ढोरफिर्दी गणेश टोल, रु 10,155।
5: जमुना पौडेल पराजुली ढोरफिर्दी हाल अमेरिका, रु 10,050।
6: शिव अधिकारी ढोरफिर्दी ठुलढुङ्गा टोल, रु 25,000।
5: ऋषिराम पौडेल सेराबेसी, रु 10,000।
6: र समया गुरुङ दुलेगौड़ा, रु 55,555।
5: दलबहादुर छेत्री मिनाम खामी, रु 11,115।
6: सूर्य प्रसाद भट्टराई ढोरफिर्दी हिमाली टोल, रु 30,111।
5: कृष्ण बहादुर बसियल ढोरफिर्दी गणेश टोल, रु 21,000।
6: बाराही बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ढोरफिर्दी उत्तम टोल, रु 15,005।
5: कलावती वाग्ले ढोरफिर्दी हिमाली टोल, रु 10,125।
6: दिलबहादुर श्रेष्ठ दुलेगौड़ा, रु 1,01,111।
5: सूर्य प्रसाद भट्टराई ढोरफिर्दी सेन्टर चोक, रु 51,111।
6: ऋषिराम महत ढोरफिर्दी हिमाली टोल, रु 15,055।
5: कृष्णराज घिमिरे दुलेगौड़ा, रु 55,555।